0: अरे भाई ये क्या हो रहा है?
1: अरे ढोलक बज रहा भाई, ढोलक
0: ढोला क्यों बज रहा है?
1: अरे शादी है यार, शादी
0: शादी हम भी चलेगा।
1: चलो चलो चलो, हाँ चलेगा।

दर्द की हद से गुजरना तो अभी बाकी है, टूट कर मेरा बिखरना तो अभी बाकी है. एंड हु एल्स बट अनूप जलोटा साहब. एंड शुक्रन शुक्रन टू एवरी वन ऑफ यू दैट हैज एंजॉयिंग द म्यूजिक. एंड यस, ही सैंग दिस गजल एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली. एंड इट्स अ लाइव प्रेजेंटेशन ऑफ अनूप जलोटा साहब. यू नो, इट्स टाइम फॉर our Sino or Siko segment of the program. And today I'm going to do a few words and one or two pieces of shayari as well. Khatra. Khatra means danger. Aap khatre mein hai. You are in danger. Khatra means danger. Fasila. Fasila is distance. Aap kitne fasile pe hai? How far away are you? Fasila is distance. Koshish mein koshish kar raha hu. I'm making an effort. Koshish means an effort. Dushman, wo mere dushman hai. He or she is my enemy. Dushman is enemy. Josh, aap bahut josh mein hai. You are very excited. Josh means excitement or to be excited. Mashoor, ye log bade mashoor log hai. Ye log बहुत ही मशहूर लोग हैं. दिस पीपल आर वेरी वेरी फेमस पीपल. मशहूर इज फेमस. आजाद, आजाद होना, टू बी फ्री. आजाद होना, टू बी आजाद मींस फ्रीडम, टू बी फ्री. रहनुमा, वो मेरे रहनुमा है. मेरे घर के जो बड़े लोग हैं अपने रहनुमा है. दोस्त एल्डर्स ऑफ आवर होम आवर गाइड्स. रहनुमा मींस गाइड. एंड तजुर्बा, मुझे तजुर्बा है. आई हैव एक्सपीरियंस. तजुर्बा मीन्स एक्सपीरियंस. तवज्जो रखो, तवज्जो रखो. प्लीज पे अटेंशन. तवज्जो इज टू पे अटेंशन. आराम करो, आराम करो. बी कंफर्टेबल एज यू कैन. यस, आराम इज कंफर्टेबल. तवज्जो इज अटेंशन. तजुर्बा इज एक्सपीरियंस. रहनुमा इज गाइड. Azad is to be free. Mashur is famous. Josh, excitement. Dushman is enemy. Koshish is effort. And distance is fasila. And khatra is danger. Look, while we're at it, let's do one or two shayari, one or two words of poetry. Muskan ban jata hai koi. Dil ki dhadkan ban jata hai koi. Muskan ban jata hai koi. दिल की धड़कन बन जाता है कोई. कैसे जिए एक पल भी उनके बिना. कैसे जिए एक पल भी उनके बिना. जब जिंदगी जीने की वजह बन जाता है कोई. Someone becomes your smile. Someone becomes your heartbeat. How can one live a single moment without them when someone becomes the very reason you live for. Beautiful. As I said, कुछ खास नहीं बस इतनी सी मोहब्बत मेरी. कुछ खास नहीं बस इतनी सी है मोहब्बत मेरी. हर रात के आखिरी ख्याल और सुबह की पहली सोच हो तुम.

is nothing special. Just this much is my love for you. You are the last thought on my mind every night, and the very first thought every morning. वो आंखों में अश्क लिए बैठे हैं, वो आंखों में अश्क लिए बैठे हैं, हम भी उनके प्यार में पागल हुए बैठे हैं, हम तो जान देने को भी तैयार हैं, मगर वो हमारी जान बने बैठे हैं, वो आंखों में अश्क लिए बैठे हैं, हम भी उनके प्यार में पागल हुए बैठे हैं, हम तो जान देने को भी तैयार हैं, मगर वो हमारी जान बने बैठे हैं. They sit with tears in the eyes, and we sit here madly in love with them. We are ready to give up our lives for them, but they have become our very lives. So let's listen to another ghazal. And this is a beautiful ghazal. It's an oldie, but of course sung by Rahul Kumar. Badi behtareen andaaz mein inhone is ghazal ko pesh ki, and I'm sure you are going to love this ghazal.

0: ये वादियाँ ये फिजाए बुला रही है तुम्हें। जी हाँ, पुरानी यादें ताजा हो गई। मुझे यकीन है कि जितने भी हमारे दोस्त और जो जो हमारे सामीन दोस्त आर लिसनिंग टू अस दिस इवनिंग, यस आई नो मेमोरीज आर फ्लडिंग बैक। देयर सो मेनी ऑफ यू आर सेंडिंग मैसेज, हुज मैसेज डू आई रीड आउट। थैंक यू गाइज सो मच। एंड यू नो I'm really, really, really taken aback by the beautiful messages that are coming through. And remember, you are with Ibi Mahmood, and of course, the program is Guldasta, and you are on Lotus FM.
1: You are listening to Guldasta.
0: Aiyab, hum Pankaj Das Sahab ko samaj farmate hain.

तुझको तेरा नसीब रुलाए, खुदा करे अनु एल्स बटाता खान साहब। यस अगेन शुक्रिया, मेहरबानी नंदरी, थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू। दिस सो मेनी हियर, दिस क्लोज टू 200 मैसेजेस दैट हैव कम थ्रू। हूज मैसेज एम आई गोइंग टू रीड, बट आई एम रियली रियली रियली ओवरवेल्म्ड। थैंक यू गाइस सो मच फॉर योर सपोर्ट, एवरी वन ऑफ यू। बट ऑफ कोर्स आई सी सम ऑफ आवर एल्डर्स आर ऑल्सो सेंडिंग इन मैसेजेस, एंड वन ऑफ देम इज आवर सिस्टर रजिया। आई एम नॉट गोइंग टू गिव हर एज अवे, बट आई कैन टेल यू शी इज इन, यू नो, in quite a advanced age, and she's celebrating her birthday today. So we say Salgirah Mubarak to you, Razia Bain. Allah Rabbul Izzat bless you, grant you good health, and of course even a longer life. Also Rukshan is also celebrating a birthday. So khas aap log ke liye this beautiful ghazal by Ashiq Khosla.